89.6 Mirchi 1. It's hot.

जा बुरा करते हाल, पलक फड़के आए कि दिल धड़के, उमर की उठा कड़कती कमा, कातिल अदा जालिम हया।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.

0: Mirchi. Iscabana, puscabana, sacabana. Rambala. Murga, murga. La virpa, la murga.
1: Mirchi, murga. Murga. हेलो
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है
3: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर।
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शाकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
7: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
6: This initiative is driven by GWM.
8: खट खट,
9: who there?
8: बनता
9: बनता who?
8: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
9: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
8: How's the Josh?
9: Hi, sir!
10: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
0: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
3: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
4: पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: उनकी दो एक सीरीज एक फिल्म, मैं हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोलडाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोलडाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
1: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
0: This initiative is driven by GWM.
2: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते हैं। जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है।
3: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6 FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

पसीना तो पसीना तेरा भी देखो छूटने लगा।

0: Energy. Isca bana, usca bana, saca bana. Ya bana. Burga, burga. Na vie bala, burga.
1: Energy, burga. हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा। हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना
2: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं। मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा, मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट,
4: पटाक।
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।

0: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है, फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
1: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
2: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
3: मैजिक शो? एंड यू?
2: इट वाज वेरी नाइस.
3: यू लाइक्ड इट?
2: यस.
3: वी शुड कम अगेन?
2: यस.
3: व्हाट्स योर नेम?
2: आयरा.
3: एंड योर्स?
2: अनविता.
3: व्हाट वाज द बेस्ट?
2: द मैजिक शो.
4: दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
5: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM, वी एंजॉयड इट्स हॉट.
6: खट खट.
7: हू दैट?
6: जाहिर.
7: जाहिर? जाहिर हूँ.
6: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं.
7: खट खट. हू दैट?
8: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1. मिर्ची, इट्स हॉट.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
2: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके romance करते थे। That used to be the spot in my school.
3: Toilet? हाँ। School था, कंजर खाना खुला हुआ था।
2: तो दोनों।
1: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 337103 राइट?
3: हाँ।
4: One second, sir. सर, आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000।
3: हाँ।
4: One second, sir. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
3: नहीं तो।
4: आपने नहीं किया है?
3: नहीं।
4: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
3: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
4: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
3: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है।
4: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
3: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
4: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
3: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
4: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
3: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर मेरा नाम लिखा है।
4: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल दिए हैं। मुझे नहीं पता आप
3: ठीक बोल रहे ना, वहीं आके बजाऊंगा।
4: आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए। सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
3: क्या
4: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
3: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
5: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी। और बैंक हमारा मिर्ची का है, आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में, 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
4: लेकिन सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
7: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
8: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
7: This initiative is driven by GWM.
9: Hello Sharps, our product is phenomenal, one of a kind, but still profit nahi ho raha hai. Maine baba ji se advice li to kehte hain,
10: office ke toilet mein toilet paper white nahi yellow lagao, profit aayega.
9: Relative se advice lo to kehte hain,
11: kaam ko time do, 25 ghante kaam karo, dark circles honge to future bright hoga.
9: Isiliye main aapke paas aaya hu promotion fund ke liye, jiske liye aap 50% equity le sakte ho.
12: Bhai kya kar raha hai tu? जब तेरे पास है मिर्ची तो क्यों ले रहा है एडवाइस उल्टी तिरछी? ना इक्विटी देना है ना इधर उधर भटकना है। गो एंड पार्टनर विद मिर्ची वन कतर, जहां तुम्हें मिलेगी सही ऑडियंस, सही ग्रोथ और ज्यादा प्रॉफिट।
13: कतर्स नंबर वन हिंदी रेडियो स्टेशन मिर्ची, टेक योर पार्टनर विद अस नाउ, योर बिजनेस विल गो वाओ। कॉल नाउ 7070-7687।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
9: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
10: बार बार
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM मिर्ची वन। इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्र बनाने की कोई खास वजह थी?
2: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रियन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, अरे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
1: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सब...

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. Na vidva la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: Could I speak to Manish, please?
1: Speaking.
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ.
2: वही वही, तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
3: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट.
4: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा.
5: कतर का नंबर 1 रेडियो स्टेशन
6: 89.6 FM मिर्ची 1.
0: इट्स हॉट.

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ no stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं, महापुरुष, महापुरुष।
9: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स,
10: जबरदस्त ट्रैक्स।
9: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
11: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Hollywood, Bollywood, Bolda.
1: Only on Mirchi. It's hot.
2: कंगना रनौत, आपका जो होने वाला हस्बैंड है उसने आपको छोड़ दिया है एक समोसे के लिए, आप उस समोसे को क्या कहेंगे?
3: जिंदगी में एक ऐसा काम किया है जो कि एक नींबू और मिर्च भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि तुमने मेरी नजर उतारी है। अच्छा तुम उसे ले गए और तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, अब हम दोनों मिलके चाय पियेंगे। एंड आई प्रॉमिस मैं तुम्हें नहीं खाऊंगी चाय के साथ।
2: समोसे के साथ एक हाइपोथेटिकल कॉन्वर्सेशन करती हुई कंगना रनौत ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
1: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
2: बहुत कुछ होगा।
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. La virtua la burka. Milci, burka.
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, किस लिए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं, हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं। उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही वही वही मैं आपको बता रहा हूँ।
2: पूरी
3: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे, या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम है आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: तो बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास?
3: नहीं नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना? ये
2: कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी। एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स से, उनको भी भेज।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहें तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं।
2: भाई अच्छा चेहरा होना भी बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई है।
3: बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था, वो बन गया आपका, अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
6: अरे पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
7: कैसे रुक सकता है?
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
4: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान खान
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
1: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
6: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
7: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
8: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

89.6 Mirchi 1. It's hot.

0: Hollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi, it's hot.
1: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
2: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर पिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
3: चार फिल्में, उनकी दो, एक सीरीज, एक फिल्म। मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
1: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑन
0: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल। ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट खट,
5: कौन है?
4: ईशांत।
5: ईशांत कौन?
4: ईशांत गदाधारी भीम, ईशांत।
5: खट खट, who that?
6: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidba la burga. Milci, burga.
1: Hello.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
1: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
1: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही क्या, ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कम्प्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
1: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
1: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कम्प्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
1: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है, हमारे पास सीधी कम्प्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
1: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
1: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
1: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
1: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
1: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
3: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
1: कुकड़ों को
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ। डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस, सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स, अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं।
6: Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
7: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
8: Yes, Bebo.
7: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
8: Yes.
7: Catch kya hai?
8: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
7: I still can't believe it. No catch.
8: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
9: खट खट,
10: कौन है?
9: अज्जू।
10: अज्जू कौन?
9: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए। होए।
10: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: Mirchi.
1: Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Murga, murga. La fiesta la murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Mr. Gagan, very good evening. बैंक से बोल रहा हूँ, आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको. आपका अकाउंट नंबर 337103, राइट?
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000.
2: हाँ.
3: वन सेकेंड सर. आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो.
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं.
3: तो फिर किसने किया है सर ये? सर ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर या मैं बैठा हूँ?
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए. कम से कम मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है. आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला? किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना किसी को चेक दिया है ना मैंने एटीएम यूज किया है.
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले.
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला ना मैं किसी को चेक दिया. एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल. जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको. अब मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पे मेरा नाम लिखा है.
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं. मुझे नहीं पता. आप मुझे क्या बताएं? आप बदतमीजी से बात मत करिए. सर मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए. बॉस को बाद में लाइन में लगाएगी. स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर. ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे. 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है.
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है? किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ. बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है. 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं आपके अकाउंट में. 1,42,000 रुपए हैं. और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था.
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है. नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने.
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स.
6: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज. द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स. ऑर्डर नाउ.
5: Powered by iPay Wallet.
7: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
8: Let's do the iPay.
5: In association with Dairy Queen. Beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
7: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
9: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
10: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
11: Baladna.
10: Taste that Qatar loves.
5: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
12: Huh? Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
13: Yes, Bebo.
12: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
13: Yes.
12: Catch kya hai?
13: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
12: I still can't believe it. No catch.
13: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
14: Cut, cut.
15: Who that?
14: Jassi.
15: Jassi? Kaun si wali Jassi?
14: Jassi who has come, auntie ji?
15: Cut, cut. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi. It's hot.

0: 6, where business meets opportunity.
1: कौन है?
2: स्टेन।
1: स्टेन कौन?
2: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को, मैं नहीं देता पैसे, जाओ।
3: खट खट, who that?
4: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल। कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस?
3: I don't have to mouth those lines.
4: Sorry, bro. Sorry.
3: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद। इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर, एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस।
2: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डा, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: दोस्ती का गुस्सा है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
6: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू, हमें दोस्ती नहीं एंटरटेनमेंट चाहिए।
7: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
8: खूब मिलेगा,
9: मिलेगा। कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
10: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

सलाम नमस्ते कतर वालों, क्या हाल चाल। हाँ जी, हाल चाल तो आपके सबके अच्छे ही होंगे, लेकिन एक दिन मैं ऐसे ही बैठ के सोच रही थी, और मैं सोच रही थी कि हमारे पास ना बैक ऑफ द माइंड कितने काम है करने के लिए, हमको ये भी करना है, वो भी करना है। फॉर एग्जांपल, हमें अपनी कोई हॉबी थी जो हम कंटिन्यू करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिंदगी में करना चाहते थे लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। और इसका बहुत बड़ा रीज़न आपको बताऊँ क्या है? यस, जो आपके हाथों में फ़ोन रहता है। इसके बारे में कोई बात नहीं करता, लेकिन ये सच्चाई है। आई एम नॉट बीइंग अ मदर टू एवरीवन, लेकिन ये एक सच्चाई है जिंदगी की जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। दैट इज हमारा फोन, जिसने हमारा सारा टाइम ले लिया है और पूरी अटेंशन हम अपने फोन को ही देते हैं। हम किसी इंसान से इतना नहीं जुड़े हैं जितना हम अपने फोन से जुड़े हैं। हमारे लिए हमारा फोन उतना इंपॉर्टेंट है जितना कि सांस लेना। बस उसी बात पे मैं एक एग्जांपल कहना चाहती हूँ। मेरी पर्सनल लाइफ में जो मैंने फेस किया है वो ये है कि फ़ोन ने मेरी ज़िंदगी का टाइम इतना ले लिया है कि मुझे मेरे लिए टाइम कम लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपनी हॉबीज़, जैसे मुझे आर्ट का शौक था, डांस का शौक था, गाने का शौक था, ये सब शौक ना मैं अपने ना करके मैं अपने फ़ोन पे लोगों को करते हुए देखती हूँ, एंड आई फील सैटिस्फाइड कि हाँ चलो कोई कर रहा है फॉर मी। बस यही हैबिट जो है फ़ोन ने मेरे अंदर डाल दी है। आई होप आप अगर इस बात पे एग्री करते ना तो मुझे ना ज़रूर मुझे मैसेज करके बताइएगा। इंस्टाग्राम हैंडल पे जो है मिर्ची ईशा के नाम से, एंड ऑल्सो आप मिर्ची वन कतर पे भी बता सकते हैं। 5110896 पे भी आप बता सकते हैं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। भाई मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ कि सारा टाइम मेरा मेरी हॉबीज को खत्म करते हुए लोगों की देखते हुए मेरा निकल जाता है। और इसी के साथ आज हम शो शुरू कर रहे हैं हमारा मिर्ची वीकेंड वाइज, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इवेंट्स की। स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida la burga.
1: हेलो,
2: कुड आई स्पीक टू मनीष प्लीज?
1: स्पीकिंग,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी। मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को, मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट, कि पहले इंसान एप था, आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में, यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया, राइट।
1: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
2: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन, राइट। एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे। इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके?
1: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ।
2: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था, तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे। तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स के सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर। आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था। बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी। तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले। मेरी बात सुनो, आई एम प्रोफेसर, मेरी बात सुनिए यार। हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है।
1: हेलो,
2: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी, मेरी बात सुनिए, मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार, मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार। मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार। इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
0: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
3: Yes.
0: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
0: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar Gold and Diamonds.
4: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी, जा बेटा जा।
5: सिमरन अपनी जिंदगी जी रही है अंकिल, क्योंकि वो सुनती है बॉलीवुड के हिट गाने। हिट गाने
6: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
7: 89.6
8: FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
9: ओह गॉड, वन मोर इवेंट।

बचपन से ना आज तक मैंने एक कहावत जरूर सुनी है अपने बड़ों से, दैट इज कि जैसा देश वैसा भेष। एंड इट सिंपली मीन्स कि जिस देश में आप रहते हो उस देश का ट्रेडिशन कल्चर को इतना करीब से देखिए और इतने करीब से उसको यू नो फॉलो करिए ताकि आपको लगे कि आप इस कंट्री के ही फैमिली मेंबर हो। तो बस अगर आपको भी मेरी तरह इन ट्रेडिशंस को और क्रिएटिव साइड्स को देखना पसंद करते हैं या आप उसमें यू नो अपने आप को इंडल्ज करना, डिग करना पसंद करते हैं ऐसे कल्चर में, तो आपके लिए एक इवेंट लाई हूँ। जी हाँ, बता दूँ कि होने जा रहा है मीना डब्ल्यू फीना, जो हो रहा है आउटडोर कोर्टयार्ड अल हजम में। एंड ये 24 सितंबर से शुरू हो चुका है एंड 24 अक्टूबर तक रहेगा। तो नो हरी, आप आराम से जाइए जब मर्जी। एंड इसके टाइमिंग्स हैं 3 PM to 11 PM। एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं है आपको, टोटली फ्री है एंट्री। एंड इसके अलावा आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं वो एटमोसफेयर ऑफ यू नो कतारी बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेसेस या आपका कह लो कि हैंड क्राफ्टेड चीज़ें हैं या पेंटिंग्स हैं जो कतर की प्रॉपर जो यू नो ट्रेडिशन शो करता है, हेरिटेज शो करता है। इवन बहुत सी ऐसी चीज़ें होंगी जो शायद आपको नहीं पता होंगी कतर की, वो भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो अगर आप जाना चाहते हैं, क्रिएटिव साइड देखना चाहते हैं कतर की, जाइए इस वीकेंड और इन्जॉय करिए बिकॉज दिस इज द परफेक्ट टाइम, बिकॉज आजकल मौसम भी बहुत अच्छा हो गया, फैमिली के साथ शाम को जाके इन्जॉय कर सकते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह पसंद करते हैं ऐसी नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, तो ज़रूर जाइएगा। And stay tuned with me only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.

बड़ी कानाफूसी चल रही है कि बड़ा सा इवेंट आने वाला है, तो भाई ये क्या सच है? देखो मिर्ची ईशा आपके साथ है और आपको कोई इवेंट के बारे में ना पता हो, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं ये ऐसे पॉसिबल ही नहीं होने देती। लेकिन आपको बता दूं कि भाई सच्ची में एक स्नीक पीक लेके आई हूँ एक ऐसे इवेंट की जो भी शुरू भी नहीं हुआ है, होने वाला है जल्द ही एक ऐसा बबल प्लैनेट इवेंट जहाँ पे एक इमर्सिव एक्सपीरियंस आने वाला है आपके दोहा में बहुत बड़े पैमाने पे, क्योंकि यहाँ पे 10 से भी ज्यादा इमर्सिव थीम्ड रूम्स हैं, वीआर एक्सपीरियंसेस हैं, इंटरैक्टिव सिमुलेटर्स हैं, ऑप्टिकल इल्यूजंस हैं, जायंट स्फेयर्स हैं, बलून्स, कलरफुल विजुअल इफेक्ट्स, ओ माय गॉड क्या क्या नहीं है, जो बोलोगे आपको वही मिलेगा। आज के जमाने का कोई भी इवेंट आप निकाल के देख लो, इमर्सिव एक्सपीरियंस के बिना मजा ही नहीं आता। तो बस अगर आप भी चाहते हैं इस इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस को अपनी पूरी फैमिली के साथ देखने का जो मौका मिल रहा है, तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी डेट जो है दैट इज 6th दिसंबर से ये शुरू होगा और ये 6th फरवरी 2027 तक रहेगा। एंड ऑफकोर्स ये बता दूं कि ये जो इवेंट है ना, ये आपका विंटर वेकेशन के टाइम बहुत काम आने वाला है, बड़ा मजा आएगा। कतर में हो, विंटर है और ये एक्सपीरियंस है भाई, मजा ही आ जाएगा नेक्स्ट लेवल। QNCC में होने जा रहा है ये, एंड ये हर एज के बच्चों के लिए ओपन है। ऑफकोर्स 17 से एज से जो

छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएं तो बेटर है, एंड उसके अलावा चिल्ड्रंस अंडर 4 आर टोटली फ्री। भाई इतना बड़ा और इतना वाइड एक्सपीरियंस हर बार मिले ऐसा जरूरी नहीं होता है, तो जब मिले फटाक से उसका इस्तेमाल करिए, यूज करिए और एक्सपीरियंस का लुफ्त उठाइए। एंड एंजॉय विद मी यानी कि मिर्चीशा के साथ बने रहिए, क्योंकि ऐसे इवेंट्स लेके मैं आती हूँ थोड़ी देर में। सो स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून।
1: खट खट, अगर कर,
2: अगर कर हूँ,
1: अगर करना है तो कर वरना छोड़ दे।
2: खट खट, हू दैट?
3: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

आने वाला टाइम कतर का जो मौसम है वो होने वाला है बहुत हसीन, जहाँ पे आपको फैमिली के साथ और आउटडोर एक्टिविटीज करने का मौका मिल सकता है। देखिए, इस मौसम के साथ साथ बहुत सारे इवेंट्स भी आते हैं, लेकिन इवेंट्स से हटके थोड़ा बात करूं कि पार्क्स में जहाँ पे आप पिकनिक मनाते हैं, जहाँ पे आपकी फैमिली ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताती है, दैट इज़ द आउटडोर एरियाज। द एरियाज जहाँ पे बच्चे बहुत पसंद करते हैं जाना वो है पार्क्स। तो ऐसे ही एक नया पार्क लेके आई हूँ। हाँ जी, एक पार्क बताती हूँ, नया प्लेग्राउंड अल खुजामा पार्क, जो एक नया कतर में ओपन हुआ है, दैट इज अ पब्लिक पार्क और ये अल वखरा में लोकेटेड है। अगर आप वखरा के पास पास रहते हैं आप जा सकते हैं, इस वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं फैमिली के साथ, एक लुक देख सकते हैं ये नया पार्क किस तरीके का बना है, क्या है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। बच्चों का प्ले ग्राउंड के अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन स्पेसेस मिलेंगी, जॉगिंग ट्रैक मिलेगा एंड आउटडोर जो फिटनेस इक्विपमेंट है वो भी इंस्टॉल किए गए हैं। सिटिंग जो एरियाज हैं फॉर फैमिलीज इट्स इज देयर, जहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये पब्लिक पार्क है एंड यू कैन हैव अ लॉट ऑफ फन देयर विद फैमिलीज। पिकनिक कर सकते हैं, इवनिंग वॉक कर सकते हैं, जॉगिंग एंड ऑफ कोर्स ऐसे ही हिडन जेम्स आपको मैं बताने आती रहती हूँ हर वीकेंड। उसके लिए ना आपको बस यही करना है, मुझे सुनना है, यानी कि मेरी शीशा को, ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: हॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डा
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: इन आवर स्कूल टॉयलेट यूज्ड टू बी द प्लेस जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे। That used to be the spot in my school.
4: स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था।
3: दोनों
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा। नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: बॉलीवुड बोल्डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
1: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
5: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
6: हमारी चोरियाँ चोरों से कम है के?
7: हमारा कतर बॉलीवुड से कम है के? कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।

भी अक्टूबर और नवंबर का महीना आता है ना, तो बस ऐसा लगता है कि बस कतर अब हो जाएगा खूबसूरत हवाओं के साथ और बीच पे बैठ के आराम से एंजॉय करेंगे। तो बस आपके लिए ना ऐसी मजेदार से ऑप्शन लाई हूं। तो अपने बैकपैक बांध लीजिए, अपने पिकनिक बैग्स भी बांध के रख लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे मज़ेदार फ्री बीच के ऑप्शंस लाई हूँ जहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी हैं और आप इन्जॉय भी कर सकते हैं। प्लेग्राउंड्स भी हैं इनके साथ साथ, आप बच्चे इन्जॉय कर सकते हैं प्लेग्राउंड्स में, आप बीच पे बैठ सकते हैं, तो आपको टेंशन फ्री रह के आराम से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। तो आपको बता दूँ भाई, कुछ ऑप्शंस बता रही हूँ, सफ़ा अल तूक बीच फैमिलीज़ के साथ जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अम्ब्रेला, सिटिंग, रेस्टोरेंट, कियोस्क्स, लाइटिंग, टॉयलेट्स, ये सब मिलेगा, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया, ग्रीन एरिया सब मिलेंगे। इसके अलावा सी लाइन पब्लिक बीच, जिसको आप सब जानते ही हैं, उसके बारे में ज्यादा मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एंड अगर बात करें अल घारिया बीच की, तो ये भी फैमिलीज के लिए है, वहां पे प्लेग्राउंड्स, रेस्टोरेंट्स, आपको लाइटिंग, टॉयलेट्स, अम्ब्रेलास, ये सब मिलेगा। एंड अल फारखिया बीच, जहां पे फैमिलीज जा सकती हैं, एंड यहां पे भी बहुत से ब्राइट ऑप्शंस हैं प्लेग्राउंड्स एंड ऑल्स के। देन अल खारिज बीच, यहां पे भी बहुत से ऑप्शंस हैं, एंड फॉलोड बाय अल ममलाहा बीच फॉर वुमेन ओनली, दिस इज फॉर वुमेन ओनली, एंड यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट्स, लाइटिंग, टॉयलेट सब कुछ मिलेगा, अम्ब्रेलाज एंड ऑल। मैंने आपको बता दिए ढेर सारे ऑप्शंस बीच पे फ्री जाने के विद फैसिलिटीज। आपको करना क्या है, अपना बैग तैयार करना है और बीच के लिए निकल जाना है किसी भी वीकेंड। बस ऐसी ही मजेदार बातों के साथ नई नई जगहों को एक्सप्लोर करते हुए आपको बताते हुए सुन रही है मुझे, यानी कि मिर्ची ईशा को ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na fiat bala burka. Mirchi, burka.
2: भाई साहब श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल
2: ये सर आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है
4: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट पटक।
7: खट खट,
8: हु दैट?
7: जाहिर।
8: जाहिर, जाहिर हूँ।
7: जाहिर सी बात है, मैं ही हूँ और कोई नहीं।
8: खट खट, हु दैट?
5: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1। इट्स हॉट, इट्स हॉट।

कभी कभी हम किसी इंसान को खोने के बाद समझते हैं कि वो सिर्फ एक इंसान नहीं, हमारी एक आदत था, हमारी खुशी था और हमारी कहानी था। वक्त गुजरता गया, बातें खत्म हो गई, पर दिल में एक सवाल आज भी रह गया। काश उस वक्त थोड़ा और जी लेते, काश वो वक्त थोड़ा और रुक जाता। कहते हैं ना कि कुछ लोग जिंदगी में लौट कर तो नहीं आते हैं, बस यादों में रहकर हमें और गहरा बना जाते हैं। लेकिन जिस इंसान ने इस दुनिया से जाना है वो जाएगा ही, हमें बस आदत हो जाती है उसके बिना रहने की। पर हमें पहले लगता है कि हम उसके बिना नहीं रह सकते, लेकिन सब कुछ चलता रहता है। एक इंसान के जाने के बाद भी वैसे ही सूरज उगता है, वैसे ही डूबता है, वैसे ही चांद आता है, वैसे ही सब कुछ होता जाता है। पर वो इंसान का चेहरा और वो इंसान की जो रूह है वो कभी आपको मिलेगी नहीं। इसीलिए बोलते हैं अपनी ज़िंदगी को खूब अच्छे से जिए और हर पल को ऐसे जिए कि वो शायद आपका आखिरी पल हो। तो बस ऐसे ही बातों के साथ सिलसिला जारी रहेगा, मेरे साथ बने रहिए। ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 & Salt।

मैदान फतेह। ये गाना ना मेरे दिल के बहुत करीब है। इस गाने को गाया गया है बाय श्रिया घोषाल एंड सुखविंदर सिंह फ्रॉम द मूवी संजू। लेकिन ये गाना मेरे लिए इसलिए स्पेशल है क्योंकि जब मैं कतर में अपना लाइसेंस का एग्जाम देने जा रही थी तो थ्रू आउट दैट जर्नी जब तक मैं लाइसेंस के टेस्ट के लिए बैठी नहीं तब तक मैं ये गाना सुनती रही और सच्ची में मुझे ऐसा लगा कि आज मैं फतेह पाकर ही रहूंगी। And I was damn sure. और हुआ भी वही, मुझे उसी समय लाइसेंस मिल गया। बट वही बात होती है कि अगर आप अपना प्रस्पेक्टिव पॉजिटिव रखते हो तो हर चीज पॉजिटिव होती है। एंड इसी के साथ एक और गाना जो है मुझे बहुत इंस्पायर करता है, दैट इज फ्रॉम द मूवी लक्ष्य। लक्ष्य का जो टाइटल ट्रैक है संग बाय कर एहसान लॉय एंड लक्ष्य मूवी से ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा की मूवी थी ये, बहुत खूबसूरत मूवी। और इस ट्रैक में भी जो बातें बोली गई ना बड़ी इंस्पायरिंग है कि भाई यही लक्ष्य है तेरा, यू हैव टू गो ऑन। तो इतना इंस्पायर्ड लगता है ना, मतलब ऐसा लगता है कि ये गाना सिर्फ मेरे लिए ही बना है टू इंस्पायर मी व्हेन आई एम वेरी लो इन माय लाइफ। ऐसे ही आपके भी बहुत इंस्पायरिंग सॉन्ग्स होंगे। कोई ऐसा सॉन्ग जो आपको बहुत इंस्पायर करता है मुझे जरूर बताइएगा, मेरे मिर्ची वन कटर अकाउंट पे बताइएगा, या फिर आप मुझे मिर्ची ईशा पे भी बता सकते हैं। एंड ऑल्सो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं 5000 1896 पे मैसेज करके बताइए कि आपका ऐसा कौन सा सॉन्ग है जो आपको आपके लो टाइम पे आपको अपलिफ्ट करता है। एंड स्टे ट्यून्ड विद मी ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन इट्स हॉट।

0: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
1: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
0: Powered by iPay Wallet.
2: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
3: Let's do the iPay.
0: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
4: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
5: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
6: With Baladna milk, laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
7: Baladna.
6: Taste that Qatar loves.
0: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
8: कटकटे
9: अबे कौन है?
8: उत्तपा।
9: उत्तपा कौन?
8: उत्तपा में दो डोसा और सांबर ऑर्डर किया था, आया क्या?
9: खटखट हो दा।
10: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot.

बातें तो बहुत थी पर वक्त थोड़ा कम था, आपका साथ मिला तो हर पल कुछ खास था। और जब इस प्रकार की बातें शुरू हो जाएं तो समझ लीजिएगा कि जाने का समय आ चुका है। जी हाँ, और बस अब जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए और मुझे याद ज़रूर करते रहिए। और उसके साथ अगर मैं चली गई अभी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे हाय हेलो भी भेज सकते हैं मिर्ची ईशा के नाम से, या मिर्ची वन कतर पे भी आप हाय हेलो बोल के मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे सुनते हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों का रिप्लाई आता है और आप लोग बताते हैं कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ ज़रूर रिप्लाई करिएगा। और अब लेती हूँ आपसे अलविदा, टाटा बाय बाय, टेक केयर और मिलती हूँ आपको अगले वीकेंड। स्टे ट्यून्ड विद अस ओनली ऑन 89.6 मिर्ची वन, इट्स हॉट।

0: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है,
1: और हम जहाँ चल जाते हैं बॉलीवुड के गानों की लाइन वहीं से शुरू हो जाती है, कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन 89.6 FM मिर्ची वन, इट्स हॉट।
2: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Surin ke saath, only on Mirchi. It's hot.
2: The show starts in 5, 4, 3, 2, 1, go.
3: एक नया हफ्ता, एक नया मिर्ची टॉप 20, और जैसे हर हफ्ते होता है, अगले कुछ मिनटों में हम गाने सुनेंगे, कहानियां सुनेंगे, कुछ पुराने गाने नए तरीके से सुनेंगे, और कुछ नए गाने शायद आपकी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन जाएंगे। लेकिन इस हफ्ते दिल में एक दर्द है, सिर्फ नाना पाटेकर के जाने का दर्द नहीं, उससे भी ज्यादा जो हो सकता था उसके खत्म हो जाने का दर्द। क्योंकि कुछ एक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में लगता है कि इनको और मिलना चाहिए था, बहुत ज्यादा मिलना चाहिए था। मेरे लिए नाना पाटेकर, इरफान खान, नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी जैसे उन चंद लेजेंडरी एक्टर्स में से थे जिनके सामने ये शब्द स्टार थोड़ा छोटा पड़ जाता है। नाना की एक्टिंग, उनका क्राफ्ट, और हमने उनसे क्या पाया और क्या शायद कभी पा नहीं पाएंगे, इस बारे में मैं आज मिर्ची टॉप 20 पे आपसे एक बात करना चाहता हूं। लेकिन फिलहाल मिर्ची टॉप 20 वही है, मैं भी वही सुरेन सुंदरम हूं, गाने वही हैं, सफर नया है, और शुरुआत कर रहे हैं वे तुमियो बंधु 2.0 फ्रॉम कॉकटेल 2, जो है इस हफ्ते नंबर 20 पर। लेकिन अब हम सीधा जाने वाले हैं जंगल की तरफ, फ्रॉम द मूवी 1, दिस इज ठुमक ठुमक और नंबर 19।

0: शरारत का अपना एक अलग मैडनेस है। लेकिन इस गाने के बाद एक ऐसी एक्ट्रेस की बात करनी है जिसका करियर मुझे बॉलीवुड की एक अजीब सी प्रॉब्लम याद दिला रहा है। यामी गौतम को स्टार बनने से ज्यादा एक्टर बनना पसंद था। पिछले 5 सालों को देखिए, 10वीं, अ थर्सडे, चोर निकल के भागा, ओ माय गॉड 2, उसके बाद आर्टिकल 370, जहां उन्होंने एक इंटेलिजेंस ऑफिसर का रोल अदा किया, और उसके बाद आया वो नेशनल अवार्ड जहां पे हक में वो बनी शाजिया बानो बेगम। हर फिल्म में एक नई यामी दिखी, और अब नई नवेली में एक ऐसी औरत जिसके बारे में ट्रेलर खुद सवाल पूछ रहा है, क्या ये बहू है या डायन? लेकिन यामी के लिए असली गेम कुछ और ही है। इस इंडस्ट्री में एक एक्टर होने के साथ साथ एक अलग परफॉर्मेंस देनी पड़ती है, स्टार होने की परफॉर्मेंस, विच मींस पीआर, पैपराज़ी, लुक पिक्चर्स, परसेप्शन, और यामी उस गेम को लेकर बिल्कुल क्लियर है।
1: In today's time, there is your PR, your paparazzi, your reviews, you have fans, you're getting mobbed, you're this. I can't do that. Because the audience doesn't have a difference. They have to watch a good film, they have to watch a good work. They have to watch what they want to watch. So, who are you creating this perception? If I'm putting my heart and soul in a film, मैं अगर मैंने अच्छा काम किया तो आप लिखेंगे उसके बारे में, मैं आपको बोलूं नहीं आप ना और लिखो आप, और इवन इफ यू डोंट लाइक इट डजंट मैटर बट यू राइट इट, आई वोंट फील कंफर्टेबल विद दैट, इट शुड कम फ्रॉम यू, आई कांट डू दीज थिंग्स बिकॉज़ दे आर नॉट मी।
0: चल, इसलिए यामी की फिल्मोग्राफी इतनी इंटरेस्टिंग है, वो हमें अपनी सेलिब्रिटी लाइफ नहीं बेच रही है, वो हमें अपना काम दिखा रही है, और अब उस काम का एक बिल्कुल अलग रंग। नई नवेली से नीति मोहन की आवाज में दिस इज भाभी तबाही, डेब्यूइंग ऑन नंबर 17।
2: नंबर 17।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो
3: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहे
3: हैं राज जी, नमस्कार, कैसे हैं आप?
2: बढ़िया है, कौन सा बोल रहे हैं?
3: मैं पीयूष बोल रहा हूँ राज जी। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
2: लेकिन है किस लिए ये तो बताइए, कहाँ पे लगाना
3: नहीं
2: है?
3: नहीं, वही मैं, जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई, आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
2: तो
3: हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी नहीं पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
2: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
3: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
2: ये कॉपी मुझे भी भेजना
3: राज जी, एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
2: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजना।
3: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। आप थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
2: हाँ बिल्कुल बताइए।
3: वही मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें।
2: हेलो
3: राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका अब आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
2: कुकड़ों को।
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। Looking to grow your business in Qatar's booming hospitality and food industry? Then don't miss Hospitality Qatar 2026, the region's leading platform for hospitality, food service and tourism. Meet key decision makers, investors and industry professionals. Showcase your latest products and innovations and unlock new business opportunities through dedicated B2B matchmaking. Join the 11th edition of Hospitality Qatar from 12th to 14th October at DECC. Hospitality Qatar 2026, where business meets opportunity.
4: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
5: Yes, Bebo.
4: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
5: Yes.
4: Catch kya hai?
5: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
4: I still can't believe it. No catch.
5: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
6: Need to send money home. Make it fast, make it safe, make it Alpha Dhan Exchange.
7: Your trusted choice for sending money, foreign currency exchange and gold bars and coins. Visit our nearest branch or download the Alpha Dhan Exchange app now. For assistance, call or WhatsApp 4453-7777.
8: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
9: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
8: This initiative is driven by GWM.
10: खट खट
11: Who there?
10: बनता
11: बनता हूँ।
10: अरे बनता तो बहुत हूँ मैं अपने आप को।
11: खट खट Who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
0: सुरेन के साथ Only on Mirchi. It's hot.
12: Number 16.

ये आवारापन अरिजीत सिंह की आवाज में, नया गाना लेकिन दर्द पुराना। और शायद इस वक्त एक अजीब सा सवाल भी है, क्योंकि इसी साल जनवरी में जब अरिजीत ने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस किया था, तो लगा था कि यार एक आवाज बॉलीवुड से धीरे धीरे दूर जा रही है। लेकिन फिर 20 साल पूरे होने की खुशी में अरिजीत ने कहा, मिलते हैं इंडिया के 9 शहरों में। ये एक फेयरवेल नहीं है, ये एक सेलिब्रेशन है। पिछले 2 सालों में सजनी, जमाना लगे, धुन तेरे इश्क में गहरा हुआ, और अब यह आवारापन। जैसे प्लेबैक से पीछे हटने से पहले भी अरिजीत कह रहा हो, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है।

लेकिन 20 सालों की कहानी में एक पल ऐसा भी है जब सारी परतें हटा दो, सारी चीजें हटा दो, प्रोडक्शन नहीं, ऑर्केस्ट्रा नहीं, बस आवाज, अरिजीत की आवाज़।

इतने सालों में हमने अरिजीत को हजार कहानियों की आवाज के रूप में सुना है, लेकिन अब वो उन कहानियों के कैरेक्टर्स के पीछे नहीं होगा, बस अरिजीत होगा। और फिर वापस चलेंगे उस गाने तक जहां से उनकी कहानी ने एक अजीब सा मोड़ लिया था। फिर ले आया दिल, प्रीतम दा को पहले यकीन नहीं था वैसे, अरिजीत ने इसका स्क्रैच गाया था रेफरेंस के रूप में, लेकिन अनुराग बासु के कानों पे जब वो स्क्रैच पड़ा तो उन्हें इतना पसंद आया कि उन्होंने कहा कि यार ये आवाज तो चाहिए। और कभी कभी कुछ जादुई करियर्स ऐसे ही शुरू होते हैं, आप किसी और के लिए गाना रिकॉर्ड करते हो और दुनिया आपको सुन लेती है, 20 साल बाद वही आवाज अपना पूरा सफर खुद गा रही है। मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट सॉन्ग ऑफ द वीक, फिर ले आया दिल, मजबूर क्या कीजिए।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून। मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स।
2: कतर, आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स? क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट, इटालियन सीजनिंग, 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज, द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स। ऑर्डर नाउ।
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, सिर्फ trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do the iPay.
1: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super speciality clinics, premier medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
6: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
7: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
8: Baladna.
7: Taste that Qatar loves.
1: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
9: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
10: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
9: This initiative is driven by GWM.
11: Back to school means more journeys, more traffic and more reasons to drive with peace of mind.
12: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400 with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start and lockout assistance, plus flexible payments and 7% cashback.
13: Call 800-0786 or visit bimaonline.com.
11: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
14: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
15: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी। डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ। तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा, फूड कतर 2026। कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो।
16: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक।
17: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
18: 89.6 FM Mirchi 1।
0: It's hot. Sureen ke saath only on Mirchi. It's hot.
19: Number 14.

0: तबाही में विशाल मिश्रा की आवाज मोहब्बत के टूटने का एहसास देती है, लेकिन मुंबई ने एक और तबाही देखी थी जिसे हमने कभी सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा। 26 नवंबर 2008 हम में से बहुत लोगों को आज भी याद है कि उस रात हम कहां थे, लेकिन किसी भी हादसे के बाद एक और जगह होती है जहां उस सच को याद रखना पड़ता है, अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार निभाना सिर्फ एक रियल इंसान को पर्दे पर उतारना नहीं था,
1: तो जिम्मेदारी थी कि
0: याद रखना पड़ता है अदालत में। प्रहार उस रात को फिर से दिखाने से ज्यादा उस रात के बाद की लड़ाई की कहानी है। उज्जवल निकम, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए सवाल सिर्फ ये नहीं था कि उस रात क्या हुआ, सवाल ये था कि जो हुआ उसे अदालत के सामने साबित कैसे किया जाए। और शायद इसलिए राजकुमार राव के लिए भी ये किरदार

0: तो होती है जब एक डराने वाला काम होता है कि ये मुझसे इतना अलग दिखते हैं, बोलते हैं, मैं कैसे कर पाऊंगा, पर जहां डर होता है वहां मजा भी आता है।
1: राजकुमार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है, स्क्रीन पर राजकुमार राव नहीं उज्जवल निकम दिखाई दे, और यही प्रहार की कहानी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुंबई ने 26/11 को अपने दिल पर झेला था, उज्जवल निकम को उस दर्द को सबूतों में बदलना था। कसाब की उम्र को लेकर अदालत में जो सवाल खड़े किए गए वो भी इसी लड़ाई का एक हिस्सा था। क्या कहा जा रहा है और सच क्या है, और ऐसी कहानी को म्यूजिक भी शोर से नहीं ठहराव से बोलना चाहिए। विशाल मिश्रा की आवाज और उन्हीं की कॉम्पोजिशन, अमिताभ भट्टाचार्य के अल्फाज, प्रहार से मेरे रहते, डेब्यूइंग ऑन नंबर 13।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: बॉलीवुड बोल डाल बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल
2: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी एंड देन एट सम पॉइंट यू नो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज़ ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय। आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह यू नो ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी। तो उन्होंने बोला कि तुम महाराष्ट्र नहीं हो पिक्चर में, मगर तुम बोल नहीं सकते।
3: ये थी हुमा कुरैशी टॉकिंग अबाउट बेबी डू डाई डू ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bollywood,
2: only on Mirchi, it's hot.

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसने मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसैल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है

कुछ सिंगर्स की आवाज में एक अजीब सी चीज होती है, आप गाना भूल सकते हो लेकिन आवाज नहीं। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, मैं आपको गाने के बोल नहीं सुनाऊंगा, नो लिरिक्स, नो बीट्स, नो म्यूजिक, सिर्फ वो आवाज, और देखते हैं कितने सिंगर्स अब बिना गाना सुने पहचान पाते हैं।

सुर के साथ वो हल्का सा गहरापन, जैसे आवाज पर सफर की धूल जमी हो। मोहित चौहान, अब एक बिल्कुल दूसरी दुनिया।

नीचे से उठती हुई रेजोनेंस, ऊपर जाकर खुलने वाली आवाज, अदनान सामी, आपने कितने पहचाने? और अगर सारे पहचान लिए तो आपने अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज नोटिस की है कि इन आवाजों का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। किसी में हवा है, किसी में ब्राइटनेस, किसी में वो रेजोनेंस, लेकिन हर आवाज के पास अपना फिंगरप्रिंट है। और फिर आज की जेनरेशन में एक आवाज, जुबिन नौटियाल। जुबिन की आवाज में एक खास ठहराव है, नोट को पकड़कर रखने का, उसके अंदर थोड़ा सा दर्द छोड़ने का। और जब वही आवाज समझो ना में आती है तो गाना सिर्फ मेलोडी नहीं रहता, उसकी एक शक्ल बन जाती है। शायद प्लेबैक सिंगिंग का असली कमाल यही है। सुर सीखा जा सकता है, रेंज बढ़ाई जा सकती है, टेक्निक पॉलिश की जा सकती है, लेकिन वो आवाज जिसे 2 सेकंड सुनते ही आप कह दें ये कौन है, वो पहचान बनाई नहीं जाती, वो आवाज के साथ पैदा होती है। जुबिन नौटियाल की आवाज में फ्रॉम द मूवी 1, नंबर 11 पर, इसे समझो ना। नंबर 11।

0: 9.6.
1: It's hot.
2: Mic check, bullet. क्या बोल रहे ले गली बॉय?
3: क्या बोल रहे एमसी शेर?
2: अरे अपन कुछ करते ना यार अपने पब्लिक के लिए,
3: करते ना आबा पटेलों के लिए भाई,
2: अपने पाशा लोग के लिए।
3: ओ एक नंबर।
2: तुम किधर हो तुम अभी?
3: बॉम्बे 17 में बात, तुम किधर हो?
4: 5.9 98.3 मिर्च।

0: आजकल हर फिल्म मेकर, हर आर्टिस्ट वाइब ही तो चेस कर रहा है, द कूल वाइब, द रेलेवेंट वाइब, द इंस्टाग्राम वाइब। लेकिन एक वाइब ऐसी है जिससे हर आर्टिस्ट डरता है, इररेलेवेंट होने की वाइब। एंड मे बी दैट्स व्हाई बॉलीवुड का एक ईरा ऑफिशियली खत्म होने वाला है, कॉफी विद करण। 22 साल, 150 से ज्यादा एपिसोड्स, बॉलीवुड के स्टार्स, उनकी गॉसिप, उनकी कंट्रोवर्सीज, उनके सीक्रेट्स। शो कोई ऐसे पाथ ब्रेकिंग टेलीविजन नहीं था, लेकिन करण जौहर ने बॉलीवुड मसाला गॉसिप को मानो जैसे संजय लीला भंसाली के फिल्म की तरह पैकेज कर दिया। प्रीमियम सोफा, डिजाइनर लाइट्स, एक्सपेंसिव गेस्ट, शैंपेन, रैपिड फायर राउंड, और बीच में वो सवाल जो अगले दिन पूरा बॉलीवुड एंड देश डिस्कस करता था। नेपोटिज्म जैसे वर्ड्स हमारी एवरीडे वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए, और अब करण कह रहे हैं बस हो गया। लेकिन उनकी एक बात शायद इस पूरी कहानी की बेस्ट समरी है।
1: आप मुझे नफरत दो, आप मुझे मोहब्बत दे दो, जस्ट डोंट गिव मी इररेलेवेंस। आई डोंट वांट टू बी इररेलेवेंट, आई ऑलवेज वांट टू बी रेलेवेंट। आई डोंट माइंड योर हेट, एज लॉन्ग एज आप मेरे बारे में बात कर रहे हैं। बहुत जरूरी है, नफरत छिड़क छिड़क दो, मोहब्बत छिड़क दो, बस डोंट इग्नोर मी। बिल्कुल मुझे फेलियर का खौफ नहीं है। अगर आप मैंने फ्लॉप फिल्म बनाई है, स्टिल यू मस्ट टॉक अबाउट, ताकि आई मैटर टू दैट एक्सटेंट कि आपने अगर मैंने बहुत बड़ी बॉक्स ऑफिस डिजास्टर दी है तो आप प्लीज इसका जिक्र करो। बात देखो कि क्या हुआ, क्यों बनाई, क्या हो गया, दिस हैपेंड दैट हैपेंड, जस्ट डोंट नॉट टॉक अबाउट इट। क्योंकि इररेलेवेंस क्या है, खामोशी क्या है, इट्स द वर्स्ट फीलिंग फॉर एन आर्टिस्ट कि आप, मैं इतना इररेलेवेंट हूं कि आपने जिक्र भी नहीं किया फॉर माय शॉर्ट ऑफ माय शॉर्टकमिंग्स और माय फेलियर्स, एंड देयर इज नथिंग वर्स फॉर एन आर्टिस्ट दैन दैट।
0: फेलियर से नहीं, साइलेंस से डर लगता है। और अब 22 साल की बॉलीवुड कॉन्वर्सेशन के बाद एक नई जनरेशन अपनी पुरानी कहानियों को नए तरीके से सुना रही है। स्कूल, पहला क्रश, दोस्त, वो पुराने दिन। सुनने में वैसे करण जौहर की दुनिया लगती है, लेकिन ये लव रंजन की सिनेमैटिक यूनिवर्स है। अरिजीत सिंह, कुमार एंड रोचक कोहली, द टीम दैट गेव अस तेरा यार हूं मैं, वेल दे आर बैक एंड दिस सॉन्ग इज कॉल्ड पुराने दिन एंड इट डेब्यूज ऑन नंबर 9।
2: नंबर 9।

0: रामायण दिवाली पर आ रही है और साल के आखिर में 3 साल का एक और इंतजार खत्म होने वाला है, पठान जवान एंड डनकी ऑल इन 2023 एंड नाउ आफ्टर 3 इयर्स शाहरुख खान इज कमिंग बैक विद किंग। सिनेमा वैसे बदल गया है, शाहरुख खान भी बदल गए हैं। अब वो स्क्रीन पर मोहब्बत का इजहार करने से पहले दुनिया से लड़ते हैं, हाथ में बंदूक होती है, आंखों में गुस्सा और हर कदम के साथ एक नया एक्शन अवतार। लेकिन फिर कैमरा धीरे धीरे उनके चेहरे के करीब आता है और एक पल के लिए सारी आवाजें खामोश हो जाती है, हम बेबस हो जाते हैं। चाहे शाहरुख खान कितनी भी एक्शन फिल्म्स कर लें, चाहे कितने भी पंचेस मार लें, कितनी भी बार दुनिया को बचा लें, उस चेहरे को देखते ही हम किसी और ही वक्त में पहुंच जाते हैं। एक ऐसा वक्त जब शाहरुख के हाथ में बंदूक नहीं एक गुलाब होता था, जब उनकी आंखों में बदले की आग नहीं इंतजार की नमी होती थी, जब वो दुनिया से लड़ते नहीं थे सिर्फ एक दिल जीतने के लिए पूरी दुनिया के खिलाफ खड़े हो जाते थे। DDLJ, दिल तो पागल है, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो, वीर ज़ारा, हर फिल्म में शाहरुख खान का एक नया रंग था। हमने वो फिल्म्स पीछे छोड़ दी हैं, शाहरुख खान ने भी पीछे छोड़ दी हैं, लेकिन हमारा दिल वो अब भी वहीं अटका हुआ है। आज जब वो स्क्रीन पर किसी विलन को गिराते हैं तो थिएटर तालियों से गूंज उठता है, लेकिन जब वो बस मुस्कुराते हैं या आंखों से कुछ कह देते हैं तो हमारे अंदर का वो पुराना सिनेमा जाग उठता है। एक्शन काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन उनकी रोमांटिक फिल्म्स की याद अब भी जिंदा है, एक पुरानी तस्वीर की तरह जो वक्त के साथ धुंधली तो पड़ जाती है मगर कभी मिटती नहीं। शायद इसलिए आंखों से तूने ये क्या कह दिया जैसा गाना एक गाना नहीं है, वो एक दरवाजा है टू दैट ईरा वेयर शाहरुख खान वाज द किंग ऑफ रोमांस, जहां बारिश अब भी हो रही है, जहां कोई ट्रेन अभी छूटी नहीं है, जहां एक लड़का अभी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है पर एक लड़की के लिए पूरी दुनिया से लड़ने को तैयार है। और उस वक्त की एक धुन हमें फिर से सुनाई देती है, कभी खुशी कभी गम, संदेश शांडिल्या, सोनू निगम एंड अलका याग्निक। मेरा रिवाइंड ट्रैक ऑफ द वीक, सूरज हुआ मध्यम।
1: टॉप 20 रिवाइंड।

0: और मुझे जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं।
1: और एड ब्रेक भी मिर्ची पर बॉलीवुड के गाने लगातार बार बार
2: बार बार
1: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन स्टेशन
3: 89.6
1: FM मिर्ची वन इट्स हॉट।
4: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
5: नंबर 5।

0: अफसाना बनाया आपने। 21 साल बाद भी हिमेश की आवाज आती है और बिना किसी इंट्रोडक्शन के आपको पता चल जाता है कि दिस इज हिमेश रेशमिया। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, हिमेश का गाना गाना इज अ वाइब। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हिमेश रेशमिया ने सिंगर बनने का प्लान बनाया ही नहीं था। 2005 में जब आशिक बनाया आपने आई थी तो उसका गाना ओरिजिनली मिक्का पाजी को गाना था, दैट्स व्हाट द थॉट वाज। लेकिन मिक्का पाजी थे लंदन में। इसके बाद क्या हुआ ये बताएंगे आशिक बनाया आपने के लिरिसिस्ट, उसके राइटर समीर साहब।
1: मिक्का ने फोन किया कि सर अभी आप डमी आवाज कर लो, मैं आऊंगा तो गा दूंगा। अब डमी आवाज कहाँ ढूंढने जाए, अब उस वक्त मुश्किल था कि जिसे गवा लो, फिर सिंगर कोई बड़ा गा और नया सिंगर वो गाने को जस्टिफाई कर नहीं पा रहा था। तो हिमेश ने बोला कि यार एक काम करता हूँ, मैं गा के दे देता हूँ, जो आएगा मिक्का तो गा के दिया। वो गाना जब शूट होने लगा तो इमरान हाशमी को सबको लगा कि नहीं यार मजा आ रहा है, कुछ अलग आवाज है, अब इसी को रखो, हटाओ मिक्का, उक्का को नहीं डालेंगे। उस चक्कर में गाना चला गया। अब वो गाना हो गया इतना बड़ा हिट कि अब वहाँ से फिर हिमेश का अपना गाने का खुद का गा के वीडियो बना, क्या क्या हुआ, इट वॉज लक बाई चांस वो मौका मिल गया।
0: बस यार एक टेम्प्ररी आवाज परमानेंट हो गई। गाना रिलीज हुआ, आशिक बनाया आपने ने धमाका किया और जिस आवाज पर लोग बोलते थे ये तो नाक से गाता है, हिमेश ने उसी आवाज को अपनी पहचान बना दी। 21 साल हो गए हैं आज हिमेश पहले जितना नहीं गाते, लेकिन जब भी गाते हैं आवाज नहीं आती, हिमेश नाम का तूफान आता है। इस हफ्ते वारू फॉर एवर फ्रॉम मिर्जापुर नंबर 4 पर है और नंबर 3 पर है ये प्रेम मोल लिया का टाइटल ट्रैक कंपोज बाय हिमेश रेशमिया हिमसेल्फ। लेकिन मेरा सबसे फेवरेट हिमेश रेशमिया सॉन्ग वो गाना है जहां उन्होंने हिट मशीन बनने के बजाय एक मूड क्रिएट किया था, एक हिप्नोटिक ग्रूव, अ डार्क साउंडस्केप और एक आवाज जो जैसे रात में तैरती है, लुट जाऊं लुट जाऊं लुट जाऊं मैं, फ्रॉम द साउंडट्रैक ऑफ कर्ज़।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 पार्टनर्ड बाय पापा जॉन्स
2: कतर आर यू रेडी फॉर द न्यू पैन पिज्जा फ्रॉम पापा जॉन्स क्रिस्पी गार्लिक पार्मेजान क्रस्ट इटालियन सीजनिंग 6 चीज ब्लेंड एंड चीज एज टू एज द न्यू स्टैंडर्ड ऑफ पैन इन कतर एट पापा जॉन्स ऑर्डर नाउ
1: Powered by iPay Wallet.
3: अपनों को भेजिए पैसे with best rates. iPay Wallet के साथ. No stress, self trust. Download कीजिए iPay Qatar आज ही.
4: Let's do the iPay.
1: In association with Dairy Queen, beat the heat with Blizzard of the Month Oreo Fudge Brownie Blizzard at Dairy Queen. Happy, taste good.
5: Your preferred health partner, Naseem Healthcare, the largest private healthcare network offering surgical care, super specialty clinics, premium medical and dental centers in Qatar. Naseem Healthcare.
6: Refreshment partner, Baladna. School's back. Time to power up.
7: With Baladna milk, Laban and yogurt, make every school day deliciously nutritious.
8: Baladna.
7: Taste that Qatar loves.
1: Travel partner Sadhguru Travel and Tours. Every journey is a memory waiting to happen. Follow Sadhguru Travel Qatar on Instagram today and make memories that last a lifetime. Think travel, think us.
0: Suren ke saath, only on Mirchi. It's hot.
9: Number 2.

0: इस गाने से सबको बहुत प्यार है, तेरा मेरा रिश्ता, लेकिन कुछ पल के लिए बस खामोशी रहने देते हैं, क्योंकि नाना पाटेकर के जाने की खबर को सिर्फ एक एक्टर की डेथ की तरह देखना मुझे बहुत छोटा लगता है। नाना उन एक्टर्स में से थे जिनके जाने के बाद सिर्फ उनकी याद नहीं आती, एक सवाल भी रह जाता है, हम उनसे और कितना कुछ देख सकते थे। नाना की ग्रेटनेस समझने के लिए उनकी पूरी फिल्मोग्राफी की जरूरत नहीं है। याद करते हैं परिंदा और याद करते हैं वो सीन, जैकी श्रॉफ खड़े हैं सामने, नाना को जिंदा जलाया जाने वाला है, और उस चेहरे पर डर भी है, गुस्सा भी है, और जिंदगी को पकड़ के रहने की वो बेचैनी भी।
1: पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मेरा अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बार ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा जला देता उसको।
0: फिर आई वो कहानी जिसका नाम है खामोशी, एक आदमी जो सुन और बोल नहीं सकता, उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और नाना सिर्फ एक नाम कहना चाहते हैं, एनी।
2: एनी
0: आवाज पूरी नहीं निकलती, लेकिन दर्द पूरा पहुंचता है, और फिर वही नाना हमें दिखे वेलकम में।
3: अरे एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठा हूं, किससे बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, समझ में नहीं।
4: कंट्रोल कंट्रोल उदय।
0: आज भी सुनते हैं तो हम हंस देते हैं, तीन अलग अलग सीन्स, तीन अलग अलग दुनिया, और एक एक्टर जो हर बार अपने आप को पीछे छोड़ देता था, लेकिन नाना की कहानी का एक हिस्सा मुझे हमेशा थोड़ा उदास करेगा। शायद वो एक ऐसी इंडस्ट्री में, एक ऐसे सिनेमा में एक्टर थे जिसने उनकी पूरी काबिलियत को कभी समझा ही नहीं। उन्होंने परिंदा में जो किया, उसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने उनके साथ फिर कभी काम नहीं किया। उन्होंने जो खामोशी में किया, उसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ वो सफर दोबारा नहीं हुआ। और कभी कभी सोचता हूं, अगर उन्हें वो रोल्स मिलते, वो फिल्म मेकर्स मिलते, वो अपॉर्चुनिटीज मिलती जो उनकी एक्टिंग डिजर्व करती थी, तो क्या नाना पाटेकर की कहानी और बड़ी होती, लेकिन शायद दुनिया ने उनके लिए एक और कहानी लिखती। लोगों ने उनकी इंटेंसिटी देखी और उन्हें एक गुस्सैल आदमी समझ लिया, वो आवाज सुनी लेकिन पीछे की नरमी नहीं देखी, उनके किरदार देखे लेकिन शायद उस एक्टर की पूरी रेंज नहीं देखी, और यही नाना की कहानी का सबसे खूबसूरत और सबसे दुख भरा हिस्सा है। उन्हें जितना मिला उसे उन्होंने यादगार बना दिया, लेकिन जो नहीं मिला उसकी कमी हम आज भी महसूस कर सकते हैं। आज नाना को याद करते हुए दुख तो होता है, लेकिन उससे ज्यादा नाज होता है कि हमारे सिनेमा ने हमें नाना पाटेकर दिया, एक ऐसा एक्टर जिसके कुछ किरदार फिल्में खत्म होने के बाद भी हमारे साथ रहे, हमारे साथ चले। नाना पाटेकर को दिल से सलाम। मिर्ची टॉक 20 पे द नंबर वन सॉन्ग वंस अगेन दिस वीक इज धुरंधर का गहरा हुआ। नंबर वन।

0: गहरा हुआ और ये सफर यहीं खत्म होता है। लेकिन नाना पाटेकर की एक बात दिल में रह गई। हमने उनका बहुत सारा कमाल देखा, लेकिन शायद वो सब नहीं जो वो कर सकते थे, और शायद इसी में उनकी लेगेसी का दर्द भी है और नाज भी। कुछ एक्टर्स चले जाते हैं, लेकिन उनका काम हमेशा दिल में रह जाता है। मैं हूं सुरेंद्र सुंदरम, मिलूंगा आपसे अगली बार ऑन द मिर्ची टॉप 20।
1: सुरेंद्र के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: अर्शद वारसे, आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
5: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए।
6: वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है।
7: पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
8: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
4: राजकुमार हिरानी में एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल।
2: बॉलीवुड बोल डाल, बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल डाल,
3: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
9: Rebook your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also, enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
10: Kids are back to school. Busy schedules, homework, classes, tests. Phew, so much to do. We know education is important. But hey, little moments of fun are important too. So, are you ready to make your school day a little more exciting?
11: Because Mirchi Recharge, driven by GWM, is coming to your school. Mirchi RJs will be there with fun, games, musti, exciting prizes and lots of surprises. Because learning comes with responsibility. But responsibility deserves a little fun too.
10: This initiative is driven by GWM.
12: कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगे।
13: जब चलेंगे गाने तो बहुत कुछ होगा,
14: बहुत कुछ होगा।
15: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
16: 89.6 FM, मिर्ची वन, इट्स हॉट।

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर डेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: Iska bana, uska bana, saka bana. Murga, murga. Naveed wala murga. Mirchi, murga.
3: Hello.
4: Could I speak to Manish, please?
3: Speaking.
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर. आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
3: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
4: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
3: 2 घंटे करना क्या है, अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं.
4: वही, मतलब... तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर के सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए. कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. आप हेलो. वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
3: हेलो,
4: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने. उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने जो लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: मिर्ची मुर्गा ड्रिवन बाय कार्मेल ग्रुप, प्रीमियम ट्रांसपोर्टेशन, हैवी ड्यूटी स्ट्रेंथ के साथ. डिस्कवर करो वर्सेटाइल शॉकमैन हैवी ड्यूटी ट्रक्स और अंकाई बसेस. सुपीरियर कमर्शियल व्हीकल्स अभी कार्मेल ग्रुप पर अवेलेबल हैं.
6: GWM के मिर्ची रिचार्ज में DMIS स्कूल में बच्चों ने किया फन. लेट्स हियर इट फ्रॉम देम.
7: इट वाज द बेस्ट. आई लाइक द मैजिक शो.
8: मैजिक शो? एंड यू?
7: इट वाज वेरी नाइस.
8: यू लाइक्ड इट?
7: यस.
8: वी शुड कम अगेन?
7: यस.
8: व्हाट्स योर नेम?
7: आयरा.
8: एंड योर्स?
7: अनविता.
8: व्हाट वाज द बेस्ट?
7: द मैजिक शो. दिस रिचार्ज इज सो कूल, बेटर देन एनीथिंग एल्स.
9: थैंक यू मिर्ची, थैंक यू GWM, वी एंजॉयड इट्स हॉट.
10: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
11: Yes, Bebo.
10: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
11: Yes.
10: Catch kya hai?
11: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
10: I still can't believe it. No catch.
11: Catches sirf matches mein hote hain, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
6: Back to school means more journeys, more traffic, and more reasons to drive with peace of mind.
12: With Bima, motor insurance starts from just QAR 400, with 24/7 roadside assistance, including towing, flat tire help, battery jump start, and lockout assistance. Plus, flexible payments and 7% cash back.
13: Call 800-0786 or visit BimaOnline.com.
6: Bima, for your peace of mind. Terms and conditions apply.
14: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर, 12 से 14 अक्टूबर, DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
15: खट खट.
16: कौन है?
15: अज्जू.
16: अज्जू कौन?
15: अज्जू ना आए बालमा, सावन बीता जाए. होए!
16: खट खट, who that?
1: Only on 89.6 Mirchi 1.
17: Mirchi,
1: it's hot.
17: Ladies and gentlemen.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंतिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: बॉलीवुड का स्पाइसी तड़का पूरे कतर को लगाया।
1: हाय दिस इज अक्षय कुमार।
2: नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन।
3: हाय एवरीबॉडी, मैं हूं शाहरुख खान।
4: हाय दिस इज सलमान खान। खान।
0: मुर्गा तो बनाया पर खिलाया नहीं, हंसाया।
5: इसलिए मुझसे ये पूछा है कि कैसे होते हैं बच्चे।
6: अरे तो शैतान होते हैं बच्चे।
7: टीचर को गुस्सा।
0: डाउन डाउन की धुन पर ट्रेंड का सीक्वेंस बताया। ट्रैफिक का शोर कहां कहां थमा है सबको बताया। स्टूडियो में बैठ के आपको डेस्टिनेशन तक टाइम पे पहुंचाया।
8: यहां की रईसी देखनी है तो हम आपको लुसेल कटारा घुमाएंगे। यहां का स्वाद चखाना होगा तो आपको मजबूस संबोसा और शर्मा खिलाएंगे।
0: एजुकेशन हो या एंटरटेनमेंट, इतनी सारी एक्टिविटीज हुई कि कतर रहा एक्साइटेड। ऐसे ही मिर्ची ने रखा कतर को यूनाइटेड।
9: हर घड़ी हर सेकंड अब मिर्ची वन के साथ अपने बिजनेस को करें एक्सेलरेट, क्योंकि पूरे कतर में मिर्ची वन है सबका।

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

को पीस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ लव मैची।

0: Metri, only on Metri. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Metri.
2: Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. Nafis bala burga. Metri burga.
3: Hello.
4: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो, मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
4: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
4: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
4: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
4: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
4: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
4: भाई मैं कह रहा हूँ, चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
4: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर से बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
4: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल्स आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
4: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है ये?
5: ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: फूड इंडस्ट्री में कुछ नया लॉन्च करना है या अपने प्रोडक्ट्स को कतर के बायर्स तक पहुंचाना है? फूड कतर 2026 इज द प्लेस टू बी. डिस्कवर न्यू फूड प्रोडक्ट्स, टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस, मीट बायर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स और क्रिएट वैल्यूएबल बिजनेस पार्टनरशिप्स ऑल अंडर वन रूफ. तो मार्क योर कैलेंडर 12 से 14 अक्टूबर DECC दोहा. फूड कतर 2026. कनेक्ट, डिस्कवर और ग्रो.
2: Free cash vouchers on diamond jewelry? Seriously, Mahi?
3: Yes, Bebo.
2: Sirf 25% pay karke gold price lock kar sakti hu?
3: Yes.
2: Catch kya hai?
3: Malabar gold and diamonds ke saath celebrations ko aur bhi khas banao. Diamond aur precious gem jewelry purchases par pao free cash vouchers. Aur sirf 25% pay karke gold rate ko block kar do.
2: I still can't believe it. No catch.
3: Catches sirf matches mein hote hai, Bebo. This is your festive gift from Malabar gold and diamonds.
4: बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना।
5: अरे, पर मिर्ची के बॉलीवुड गानों पर कोई कैसे रुक सकता है?
6: कैसे रुक सकता है?
7: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
8: 89.6
9: FM मिर्ची वन.
10: इट्स हॉट.
11: लेडीज एंड जेंटलमैन,

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: तुषार कपूर आपका कैरेक्टर इन गोलमाल फ्रेंचाइज इज सेंसेशनल. कितना मजा आया टू माउथ दोज लाइंस.
4: आई डोंट हैव टू माउथ दोज.
5: सॉरी ब्रो, सॉरी.
4: तो मैं क्यों क्रेडिट दूं? नहीं, बट आई एम अ बिग फैन ऑफ साजिद फरहाद. इनकी नरेशन, मतलब दे जस्ट ट्रांसलेट रोहित विजन सो वेल इन दिस जोन, इन दिस जॉनर. एंड आई विश आई गेट टू डू अ फिल्म समडे वेयर आई हैव टू माउथ देयर लाइंस.
3: तुषार कपूर, इनफैक्ट वी विश कि आपको कभी भी गोलमाल की किसी भी फ्रेंचाइज में लाइंस ना मिले, सिर्फ ए ई आई ओ यू. आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल.
2: Bollywood, Bollywood, Bollywood, Bolda. Only on Mirchi. It's hot.
6: Pre-book your jewelry at Kalyan Jewelers and avail gold rate protection. Also enjoy 30% off on making charges. Offer only till 25th October. Rush to your nearest Kalyan Jewelers store today to grab this offer. Conditions apply.
7: Cut, cut.
8: Kaun hai?
7: Ishant.
8: Ishant kaun?
7: Ishant, Gadadhari Bhim, Ishant.
8: Cut, cut. Who that?
2: Only on 89.6 Mirchi 1. Mirchi, it's hot. It's hot.
9: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: खट खट अखबार
2: अखबार हु
1: अरे अखबार बता दिया है बार बार नहीं ना बता पाएंगे
2: खट खट हु दैट
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1 इट्स हॉट

ब्रेक तो ब्रेकिंग न्यूज, तेरे प्रिटी फेस पे फंस गया, गलती हुई मैं तुझे देख के हंस गया, मेरे सिचुएशन पे ना लाफ करो, मुझसे दूर रहो, मुझे माफ करो।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: हेलो
3: मिस्टर गगन, वेरी गुड इवनिंग, बैंक से बोल रहा हूँ। आपके अकाउंट के बारे में थोड़ी सी डिटेल देनी थी आपको। आपका अकाउंट नंबर 3371033, राइट? वन सेकेंड सर। सर आपके अकाउंट में बैलेंस जो था परसों 1,43,000। वन सेकेंड सर, आज सुबह 95,000 का विड्रॉल किया है आपने?
2: नहीं तो।
3: आपने नहीं किया है?
2: नहीं
3: तो फिर किसने किया है सर? ये सर, ये 95,000 किसने किया है विड्रॉल आपके अकाउंट में से?
2: आप बैठे वहाँ पर, मैं बैठा हूँ।
3: सर आप मुझ पे क्यों चौड़ा हो रहे हैं? हम तो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हमारी सर्विस देखिए कम से कम। मुझे पता चला, मुझे ऐसी पता नहीं क्यों लग रहा था आपके अकाउंट में से 95,000 रुपए निकालनी है। आप कह रहे हैं आपने नहीं निकाले, किसने निकाला, किस पे शक है आपको?
2: मैंने पिछले एक हफ्ते में कोई भी ना कुछ को चेक दिया है, ना मैंने एटीएम यूज किया है।
3: 95,000 का विड्रॉल नहीं किया आपने अपने बैंक में से?
2: मैंने 2 पैसे भी निकाले।
3: तो फिर ये किसने निकाला है यार?
2: मैंने कोई पैसा नहीं निकाला, ना मैं किसी को चेक दिया। एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल? ओके
3: सर, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। जब आप लेने आते हैं हम आपको मना करते हैं, लेके मत जाओ, हम दे देते हैं ना आपको। मुझे क्या पता कौन लेके गया सर?
2: वो जो नोट लेके जा रहा है उस पर क्या मेरा नाम लिखा है?
3: आपका नाम से क्या होता है यार? मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आपके बैंक से 95,000 रुपए निकाल लिए हैं। मुझे नहीं पता। आप मुझे क्या बताए? आप बतमीजी से बात मत करिए।
2: सबको लगा दूंगा लाइन में
3: सर। मुझे स्टेटमेंट निकाल दीजिए, बॉस को बाद में लाइन में लगाएंगे। स्टेटमेंट निकाल रहा हूँ मैं सर। ये मैं आपकी स्टेटमेंट मेरे सामने है कंप्यूटर पे। 15 तारीख को आप नहाए थे, आपने मांग निकाली है।
2: क्या
3: मांग निकाली है आपने? आप क्या क्या निकालते रहते हो यार?
2: किससे बात करनी है, किस बैंक से बोल रहे हो तुम?
4: भाई साहब मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ, बात आपसे ही करनी थी और बैंक हमारा मिर्ची का है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा बन गया है। 95,000 रुपए नहीं निकाले हैं, आपके अकाउंट में 1,42,000 रुपए हैं। और ये जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनती है ना कमलेश, इन्होंने मुझे बताया था कि आपके अकाउंट में इतने पैसे हैं और आपको थोड़ा सा झटका देना था।
2: लेकिन
3: सर आपके अकाउंट में ये एक चीज और निकाल रही है, आपने भड़ास भी निकाली है। नवेद पे भड़ास निकाल दिया आपने।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: फ्री कैश वाउचर्स ऑन डायमंड ज्वेलरी? सीरियसली माही?
7: यस बेबो।
6: सिर्फ 25% पे करके गोल्ड प्राइस लॉक कर सकती हूँ?
7: यस।
6: कैच क्या है?
7: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के साथ सेलिब्रेशंस को और भी खास बनाओ। डायमंड और प्रेशियस जेम ज्वेलरी परचेसेस पर पाओ फ्री कैश वाउचर्स और सिर्फ 25% पे करके गोल्ड रेट को ब्लॉक कर दो।
6: आई स्टिल कांट बिलीव इट, नो कैच।
7: कैचेस सिर्फ मैचेस में होते हैं बेबो। दिस इज योर फेस्टिव गिफ्ट फ्रॉम मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स।
8: Our business is our business, none of your business.
9: पर दीदी, our entertainment is your entertainment. Entertainment,
10: entertainment. Qatar का number one radio station.
11: 89.6
5: FM, Mirchi 1. It's hot.
12: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑयल टिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: मैंने तो यहाँ तक सुना है कि आप दानी हैं, ज्ञानी हैं, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप पुरुष ही नहीं महापुरुष, महापुरुष.
1: क्योंकि आप सुनते हैं मिर्ची पर बॉलीवुड के जबरदस्त ट्रैक्स. जबरदस्त ट्रैक्स कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन.
3: 89.6 FM Mirchi 1. It's hot.
4: Ladies and gentlemen, we are gonna go. We are gonna go. We are gonna go
5: on a ride.
0: Club Mirchi.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Bordal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Bordal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: हुमा कुरैशी, आपका जो किरदार है बेबी डू डाई डू में, उसे महाराष्ट्रन बनाने की कोई खास वजह थी?
4: नचिकेत सर आए, उन्होंने पढ़ी, एंड देन एट सम पॉइंट आई गॉट वेरी एक्साइटेड बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रन बॉय. आई थॉट माय डायरेक्टर विल बी वेरी हैप्पी, कह रहे वाह, यू नो, ये हमारे खेड़े की कुछ वो करना चाहती है, बट आई थिंक वो डिसअपॉइंट हो गए कि ये नहीं कर पाएगी. तो उन्होंने बोला कि

Keep her go wild.

छोटी हो या बड़ी, साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए. ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस. डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट.

फेस्टिवल का सीजन है, वीकेंड का रीजन है और पार्टी का मूड तो ऑलरेडी बन ही चुका है. लाइट्स अप, म्यूजिक अप, एनर्जी अप, बिकॉज दिस इज क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टेका. सो हियर वी गो गाइस, लेट्स बिगिन द सेलिब्रेशन.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Murga, murga. Navid bala murga. Mirchi, murga.
2: Hello.
3: Could I speak to Manish, please?
2: Speaking.
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से. ओके मनीष, आई नीड योर फेवर, आपकी मदद की जरूरत पड़ गई थी. मैं यहाँ पे लेक्चर्स देता हूँ स्टूडेंट्स को. मैं यहाँ पे जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मेरे स्टूडेंट्स को, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, कि पहले इंसान एप था. आई बिलीव आपने भी पढ़ा होगा किसी जमाने में. यहाँ पहले इंसान बंदर की शक्ल में था, फिर वो धीरे धीरे धीरे धीरे यू नो एक इंसान बन गया. राइट,
2: बताएंगे आप कौन बोल रहे हैं?
3: मैं एक बार फिर बताता हूँ, मैं प्रोफेसर त्रिपाठी बोल रहा हूँ. मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. राइट, एक मेरा सब्जेक्ट है जो मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ. 40-50 स्टूडेंट्स हैं मेरे. इफ यू डोंट माइंड, मैं प्लीज आपसे अगर चाहूँ आप मुझे 2 घंटे दे सकते हैं मेरी क्लास में आके.
2: 2 घंटे करना क्या है, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ. मतलब
3: तो ये मेरा एक सब्जेक्ट है जो मैं स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि इंसान बंदर होता था. तो मेरे स्टूडेंट्स इस बात पे यकीन कर नहीं रहे. तो आप अगर क्लास में आ जाएंगे ना स्टूडेंट्स के सामने, तो स्टूडेंट्स को सामने मैं आपको खड़ा कर दूंगा और आपका चेहरा ब्लैकबोर्ड के पास आ जाएगा, तो उनको यकीन आ जाएगा कि हाँ पहले इंसान वाकई में बंदर. आई एम श्योर कि सारे यकीन कर जाएंगे कि हाँ पहले इंसान बंदर हुआ करता था. बस इतनी हेल्प चाहिए थी मुझे आपकी. तो कब आ जाएंगे आप मुझे ये बता दीजिए, कल का रख ले. मेरी बात सुनो. आई एम प्रोफेसर. मेरी बात सुनिए यार. हेलो, वैसे दिल्ली कितनी गालियां खाऊं मैं आपको हंसाने के लिए यार, ये नाइंसाफी है.
2: हेलो,
3: मैं प्रोफेसर त्रिपाठी. मेरी बात सुनिए. मुझे माफ कर दो, थोड़ा ज्यादा हो गया था. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे नंबर दिया था तुम्हारी दोस्त कपिल ने, उसने कहा था कि तुम्हारा मुर्गा बना दे यार. मैं मुर्गा बनाया है, तुम रेडियो मिर्ची पे हो. आपकी इजाजत हो तो मैं हंस लूं यार. मनीष, वो एक्चुअली स्टूडेंट्स को यकीन नहीं आ रहा था कि आदमी पहले बंदर होता था, इसलिए मैंने लगा कि तुम आ जाओगे तो एक बार काम बन जाएगा यार. इंसान पहले बंदर होता था, अब मेरे को यकीन आ गया, मैं बता दूंगा उनको.
1: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयोंटिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: मेरे बेटे आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे।
2: अरे करण अर्जुन, आमिर, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय, इमरान, सबके गाने आएंगे दीदी।
3: आएंगे दीदी, आएंगे दीदी।
4: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
5: 89.6 FM Mirchi 1.
6: It's hot.
7: Ladies and gentlemen.

एडवाइस चाहिए पर व्हाट्सएप ग्रुप म्यूट करने की हिम्मत किसी में नहीं है। मुझ में है यार, दीदी शेरे बलोच है, ठीक है, और आपकी खातिर यहाँ पे बैठी है विथ क्लब मैची।

मोबाइल चोरी हो या डेटा लीक, 2026 में कुछ भी सेफ नहीं है। क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योंतिका, और तूने तो चोरी किया रे जिया।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Mirchi.
2: भाई साहब, श्रीनिवासपुरी थाने से बोल रहे हो। मोबाइल कहाँ से मिला आपको?
3: मोबाइल?
2: ये सर, आपका हैंडसेट और आपका जो नंबर है इसकी रिपोर्ट आ गई है। ये कहाँ से मिला आपको मोबाइल?
3: क्या रिपोर्ट आ गई है?
2: यही कि ये मोबाइल गायब हुआ है, किसी ने कंप्लेंट लिखवाई है, मोबाइल चोरी हो गया। ये
3: मोबाइल चोरी हो गया?
2: हाँ जी। भाई साहब, हम झूठ बोल रहे हैं क्या यहाँ बैठ के?
3: हाँ, पोस्टपेड सर्विस है सर, आप से पता लगा लो।
2: अरे मेरी बात सुनो यार, मैं से पता क्यों लगवा लूँ? हमारे पास कंप्लेंट है, इस नंबर से गलत मिसयूज हो रहे हैं, चोरी का मोबाइल है ये।
3: कौन मिसयूज कर रहा है? ऐसा कुछ नहीं है सर।
2: ये हम कुछ नहीं जानते प्रभाकर, ऐसा है हमारे पास सीधी कंप्लेंट है। अब इसके नाम पे वारंट जारी हो जाएंगे, आप इसको सरेंडर करो या आके अपने आप को बताओ कि आपको मोबाइल कहाँ से मिला है, कहाँ से लिया था आपने ये।
3: ये मेरा नंबर जो है 6 साल पुराने नंबर है ये।
2: भाई मैं कह रहा हूँ चाहे 15 साल पुराना है, इस नंबर से मिसयूज हो रहे हैं, इनको थ्रेट कॉल जा रही है यार।
3: मैं एक शरीफ आदमी, मैं थ्रेट कॉल किसको दूंगा?
2: मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मसला इधर ही खत्म करो, कहीं श्रीनिवासपुरी आके मुझसे मिल लो, मैं इसको फिर सॉर्ट आउट करता हूँ, इसके पेपर वेपर बनाता हूँ।
3: मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सर।
2: आपने धमकी दी होगी किसी को, हो गया होगा आपका पंगा किसी से, ऐसी 25 कॉल आती है हमारे पास। हाँ प्रभाकर।
3: हाँ जी सर।
2: ये एक बंदा है, इसे आप मिल लो, ये सारे केस सॉल्व कर देगा, मैं आपको बता रहा हूँ आपकी आसानी के लिए।
3: अच्छा बात करवा दो, कौन है
4: ये? ये नवेद है, रेडियो मिर्ची पे रहता है, जो सबका मुर्गा बनाता है। प्रभाकर तुम रेडियो मिर्ची पे हो? अब जरा मेरे साथ प्यार से कह दो प्रभाकर,
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोट।
7: अरे भाई गुस्सा मत कर, इंसाफ और एंटरटेनमेंट दोनों मिलेगा।
8: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन,
9: 89.6 FM, Mirchi 1. It's hot.
10: Ladies and gentlemen, we are gonna go
11: on a ride.

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: खटखट.
3: कौन है?
2: स्टेन.
3: स्टेन कौन?
2: स्टेन कर दिया मेरे पैंट को. मैं नहीं देता पैसे, जाओ.
4: खटखट. Who that?
5: Only on 89.6 Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Club Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal.
2: Only on Mirchi. It's hot.
3: अर्शद वार से आपका एक बहुत ही सक्सेसफुल टाइम चल रहा है, चाहे ओटीटी की बात हो या थिएटर की। प्रीतम और पेड्रो में आपने राजकुमार हिरानी से अच्छे खासे पैसे मांगे होंगे, नहीं?
4: पैसे तो मैंने दिए इनको काम करने के लिए। वो पिक्चर चलने पे डिपेंड करता है। पिक्चर बिट गई तो इससे बुरा साल नहीं होगा।
5: उनकी दो, एक सीरीज एक फिल्म, मैं ही हूँ जो सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड हूँ।
3: राजकुमार हिरानी, मे एवरीवन बी एज अनएम्प्लॉयड एज यू। आप सुन रहे हैं मिर्ची, इट्स ऑल
1: बॉलीवुड बोल्डाल। बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल,
2: ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: दोस्ती का एक उसूल है मैडम, नो सॉरी नो थैंक यू।
7: भाई साहब, सॉरी एंड थैंक यू। हमें दोस्ती नहीं, एंटरटेनमेंट चाहिए।
8: तुम मिर्ची सुनो ना, जहाँ एंटरटेनमेंट खूब मिलेगा,
9: खूब मिलेगा, खूब मिलेगा।
10: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
11: 89.6
12: FM, Mirchi 1. It's hot.
13: Ladies and gentlemen, we are gonna go, we are gonna go, we are gonna go
14: on a ride.
15: Club Mirchi.

वेलकम बैक टू क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन योर टिका बेबी। वीकेंड का मूड तो सेट हो ही गया है, अब बस वॉल्यूम बढ़ा दो एंड लेट्स पार्टी।

इंडिपेंडेंस का अभी भी फीवर जारी है ऑन क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑल ऑन दिखा। अब इंडिपेंडेंस से स्ट्रेट टू पैसा, बिकॉज आफ्टर ऑल उसके ऊपर ही तो सब डिपेंडेंट है ना। क्लब मिर्ची रे।

नागिन, कितने शॉट्स पिए नागिन, फिर कभी बाएं फिर कभी दाएं, नाचे तू जैसे नागिन, कहीं तेरा फोन है कहीं तेरे शूज है, थोड़ी गुस्सा है थोड़ी कंफ्यूज है, लगती है प्यारी पर उड़े तेरे फ्यूज, दिल करे ब्रेक तू ब्रेक इन यू।

0: 89.6 Mirchi 1. Mirchi 1. It's hot.
1: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

मिर्ची विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ऑन दिखा. दिस इज द साउंड ऑफ द फ्यूचर. और फ्यूचर किसने देखा है? प्रेजेंट में एंजॉय करेंगे, पार्टी करेंगे, फेस्टिव वाइब्स इन द एयर एंड पार्टी वाइब्स एवरीवेयर. लेट्स गो.

जहाँ सेलिब्रेशन हो वहाँ क्लब मिर्ची की एंट्री तो बनती है. तो चलो फिर से वापस जाएंगे ऑन द डांस फ्लोर विद डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची और योनिका.

0: Ritchie, only on Ritchie. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: हेलो,
2: राज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: बोल रहे
2: हैं। राज जी नमस्कार, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया। कौन सा बोल रहे हैं?
2: मैं पीयूष बोल रहा हूँ। राज जी मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्योंकि हम दिल्ली में कुछ काम कर रहे हैं, हमारी एजेंसी। अच्छा, इसमें यह है कि दिल्ली के कुछ अच्छे चेहरे जो हैं, और ऊपर वाले ने आपको इतना अच्छा चेहरा दिया है। मेरा अभी वो दोस्त बात कर रहे थे, हम लोग कह रहे थे कि यार यही चेहरा है जिसको दिखाया जा सकता है, यू नो, जिसको दिल्ली के सामने लाया जा सकता है। तो हम आपका एक फोटोग्राफ चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो एक फोटोग्राफ हमें आप भेज दीजिए।
1: लेकिन है किस लिए, ये तो बताइए किस लिए, कहाँ पे लगाना
2: नहीं,
1: है?
2: नहीं, वही मैं, आप जो दिल्ली के अच्छे चेहरे हैं हमने कुछ ही सिलेक्ट किए हैं, उसमें अब जाहिर सी बात है भाई आपका तो सिलेक्ट होना ही था। दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि देखो ये है चेहरा।
1: तो
2: हाँ वही मैं आपको बता रहा हूँ।
1: पूरी
2: नहीं, पूरी मैगजीन तो नहीं है, एक पेपर है बड़ा सा। आप जो है एक फुल लेंथ फोटोग्राफ देना चाहेंगे या आपके पास अच्छा फोटोग्राफ? मुझे तो मालूम आपके सारी अच्छे फोटोग्राफ है,
1: बताओ किस तरह का चाहिए, फुल लेंथ चाहिए हमारे पास? तो
2: नहीं, आप मुझे मेरी आईडी पे मेल कर दीजिए, मैं उसको जितनी जल्दी हो सकता है रात ही प्रिंटिंग में लगवा देता हूँ। तो मैं ये काम कल से शुरू कर देता हूँ, है ना?
1: ये कॉपी मुझे भी भेजना।
2: राजी एक कॉपी नहीं, आपके घर में 10 कॉपी भेजूंगा, आप भी आगे दिखा दीजिएगा
1: अपने फ्रेंड्स को, उनको भी भेजूंगा।
2: हाँ, उनको मैं ही फॉरवर्ड कर दूंगा। अब थोड़ा सा वो कंटेंट जो लिखा हुआ है, जो आपके फोटो के ऊपर नीचे लिखा हुआ है, वो पढ़ के सुना दूं आपको अगर चाहे तो?
1: हाँ बिल्कुल बताइए।
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, ऊपर तो सबसे ऊपर आपका जब बीच में चेहरा लगाया हमने फोटो, वो जो आपका चेहरा है अच्छा वाला, उसके ऊपर लिखा हुआ है वॉन्टेड इस आदमी को, नहीं ये वांटेड सबसे ऊपर लिखा हुआ है, उसके नीचे हम लिख रहे हैं थोड़ा सा बोल्ड लेटर्स में, इस आदमी को देखते ही पुलिस को इत्तला करें या फिर खुद ही गोली मार दें, ऐसे आदमियों से बच के रहें ताकि वो फोन ना काट सकें। राज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, आप रेडियो मिर्ची में हैं, मुर्गा बन गया भाई तुम्हारा। मुझे अतुल ने तुम्हारा नंबर दिया था, उसने कहा था कि तुम्हारा चेहरा अच्छा खासा है माशाल्लाह, तो मैंने सोचा चलो उसको काम में लाते हैं। बड़ी प्रॉब्लम वाली बात तो ये थी कि मुर्गा बनना था वो बन गया, आपका आइंदा कभी नहीं बनेंगे आप, इसलिए
1: कुकड़ों को।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
4: खट
5: खट, जस्सी।
6: जस्सी? कौन सी वाली जस्सी?
5: जस्सी हु हैज कम आंटी जी।
6: खट खट, हु दैट?
3: ओनली ऑन 89.6 मिर्ची 1, मिर्ची, इट्स हॉट।
7: लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर गोना गो,
8: on a ride.

वेलकम बैक पीपल, क्लब मिर्ची विद डीजे रिचर्ड मिर्ची ऑयल टिका। अब छुट्टी हो या ना हो, वीकेंड को सेलिब्रेशन बनाएंगे ना एक साथ ऑन क्लब मिर्ची।

0: Mirchi, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: अब जब कोई इतना प्यार से बुलाए तो मिर्ची जाएगा ही. मिर्ची टर्मिनल सीजन 5 कमिंग सून.
2: ओ भाई, जोश है फुल हाई और वॉल्यूम भी, क्योंकि आ रहे हैं बॉलीवुड के बेस्ट ट्रैक्स बैक टू बैक.
3: कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन
4: 89.6
5: FM Mirchi 1. It's hot.
6: Ladies and gentlemen, we are gonna go.

0: Ritchie, only on Mirchi. We'll be right back after these messages. It's hot.
1: Bollywood Boldal. Bollywood, Bollywood, Bollywood Boldal. Only on Mirchi. It's hot.
2: भूमि पेडनेकर, हमारे स्कूल में तो टॉयलेट में जाके टॉयलेट करते थे, आपके स्कूल में क्या करते थे?
3: In our school, toilet used to be the place जहाँ पे सब जाके रोमांस करते थे. That used to be the spot in my school.
4: टॉयलेट हाँ. स्कूल था, कंजर खाना खोला हुआ था.
3: तो दोनों.
2: इसी कहानी से मुझे लगता है टॉयलेट एक प्रेम कथा का नाम रखा होगा. नहीं, आप सुन रहे थे अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर को ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
1: बॉलीवुड बोल्डाल. बॉलीवुड बॉलीवुड बॉलीवुड बोल्डाल. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
5: लेडीज एंड जेंटलमैन.

go wild, you are go wild.

बड़ी साउंड ट्रैक बड़ा होना चाहिए ऑलवेज दैट्स व्हाई क्लब मिर्ची इज योर फेवरेट प्लेस डीजे रिचर्ड मिर्ची और योंतिका ग्रूविंग विद यू टुनाइट